भगत जना के मन बिसरा। कोई सुखानी मनी लभदा फिरदा है, कोई नागमनी लभदा फिरदा है, कोई कोई सुख लभदा फिरदा है। पर गुरु अर्जुन देव जी कह रहे ने जिन्हां कोल सुखां दी मनी सुखमनी है ना, उस कर दे रोग कलेश दुख दूर हो जाते। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माहे मिटा। इस शरीर दे भी कलेश मुक जाते, घर परिवार दे भी कलेश मुक जाते ने, पर इस सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम एदा वासा ही भगतां दे हिरदे विच हुंदा है। भगत जना के मन बिसरा, जां इंज कह लईए जिथे सुखमनी बस जाए वह भगत बन जाते। ऐसी बख्शिश आप जी ने माणी है। पुल चुक दी खीमा गुरु भगत।

जात मह ज्योत ज्योत मह जाता अकल कला भरपूर रहया। तू सच्चा साहेब सिफत सवालेओ जिन कीती सो पार पया। कहो नानक करते किया बाता जो किश करना सो कर रहया।

गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरग मश पयाले गावन तुदनो रतन उपाय तेरे आठ साठ तीरथ नाले गावन तुदनो जो

आखण वाला क्या विचारा, सिफती परे तेरे पंडारा, जस तू देहे तिसै क्या चारा, नानक सच सवारण हारा। आसा महला पहला, आखां जीवा विसरै मर जाओ, आखण औखा साचा नाओ, साचे नाम की लागै भूख, उत भूखै खाए चली है दुख। सो क्यों विसरै मेरी माए, साचा साहेब साचे नाए, रहाओ साचे नाम की तिल वड़े आई, आख थके कीमत नहीं पाई।

हर त्यावह हर त्यावह तुत जी, से जान जुग मैं सुख वासी, से मुकत पाए जिन हर त्याया जी, तिन तूटी जम की फासी, जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी, तिन का पौ सब गवासी, जिन सेवया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी, से तन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी, तेरी भगत भंडार जी, भरे बेअंत बेअंता, तेरे भगत सलाहन तुत जी, हर अनेक अनेक अनंता, तेरी अनेक कर है हर पूजा जी, तप तप है जप है बेअंता, तेरे अनेक पढ़े बहु सिमरत शास्त्र जी, कर किरिया खट कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी, जो भाव है मेरे हर भगवंता, तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुद जे वड अवर ना कोई, तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू निहचल करता सोई, तुद आपे भाव सोई वरत जी, तू आपे कर है सो होई।

तुम कावहो, आप हाथ दै मोहे बचावहो। सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिखो सबै करतारा।

हरे दीन बंध दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर दासो कंता काल पाए ब्रह्मा बप तरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कार बिसन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी सेव कियो बेदराज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा।

हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी सेवकन को सेव गुण सुख दियो सत्रन को पालमो बाद कियो काटो काट के अंतर की जानत पले बुरे की पीर पशानत चीटी ते कुंचर असथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पशाना काट काट के पट पट की जाना जब उद करख करा करतारा प्रजा तरत तब देह अपारा जब अकरख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ जेते बदन श्रेष्ठ सब तार आप अपनी बूझ उचारै

सिख उबारो असिख संगरो दोष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस तुज तव सरनी परे तिनके दोष्ट दुखे तो हवै मरे।

प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजियां वादाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईयां सबदोता गावहो हरि केरा मन जिनी वसाया कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया।

का पयो जिस का सबस आधारो जे को खाव जे को पुंचै तिस का हुए उधारो एह वासत तजी नहं जा।

पौड़ी। तिथ तू समरथ जिथ कोए नाहे, उथ तेरी राख अग्नि उदर माहे। सुन कै जम के दूत नाए तेरा छाड़ जाहे, पौ जल बिखम असगाहो, गुर शब्दी पार पाहे।

सत्संग जी बोलो जी वाहेगुरु। एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वास बोधि पाछे दसवीं प्रथम भगवती समर कहे गुरु नानक लई त्याय फिरंगत गुरते अमरदास रामदास से हुए सहाय अर्जुन हर गोबिंद सिमर श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याठे सब दुख जाए ते बहादुर सिमरया कारण उन्हें दयावता है सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई हुए सहाय दसा पातशाह जी के पुत्रात्मक रूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी पाठदार दा त्यंतर के घर तक बोलो जी वाहेगुरु। श्री मनवाज आप जी दे पांच प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्ते हटियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपया वन चकिया देख चलाई ते वाहे देख निड़के चादना प्यारे ते त्यारे नी कमाई दे अंदर के बोलो जी वाहेगुरु। जिन्हां सिंघां सिंघणियां धर्म ही सी दित्ते बंद बंद कटवाए खोपरियां लवाईया चरखियां ते चढ़े आर न चलाए गए गुरुद्वारे सेवा वास्ते कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं आ रहा सी किसे दे के सत्संग निभाया ते नानी कमाई दे अंदर के बोलो जी वाहेगुरु। बोलो जी वाहेगुरु। प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे नाम चेता वह चित आवन का सद का सर्व सुख हुआ है जहां जहां गुरु का चर्चा चरियात देख देख की फतेह मृत की पहज पंथ की जी श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोलबाले बोलो जी वाहेगुरु। सिखा नु सिखी दान केस दान रैत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब दर्शन स्नान क्योंकि चंडे बूंगे चुक चुक अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहेगुरु। सिखा का मन नीवा मत तुझे मत पद के राखे आप वाहेगुरु। गुरु की विवाह पंथ सदा शाही दता दियो गुरुद्वारा ननकाणा साहेब पंजा साहब गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हों तो आप जी ने पंथ में छोड़िया गल दर्शन दार सेवा समाधान अपने खालसा जी बख्शो हे रोटियां दी ओट गुरु न्यासरिया आसरे गुरु धन धन गुरु रतार पिता जी हो आपके चरण कामना दरदास दिता अज आपने बख्शिश की आपके चरण पितर गुरबाणी सुखनी साहब ने संपूर्ण पाठ दिता ऐस वे संध्या समा जान के आपके चरण शोरदार रह रहा शब्द पाठ की तेरी कृपा करो होइया भुला चुका नहीं माफी बख्शो पढ़ी हुई बाणी सोध के सच खंड प्रवान करो बाणी का भाव सारिया संगत की कृपालता करो जी अगो तो शोध से पितर बाणी उतारी मन बुद्धि बख्शिश करो महाराज इस खुशी में आप जी बख्शिया दर्शा विचों पितर कड़ाप शादी देख तैयार कर खा दता आप जी भोग लाओ शीत प्रसाद साह संगत रसना लायक होवे जो जी सके स्वास स्वास आप जी का पितर नाम जप बख्शिश करो दता दुखा कलेशा रोगों का नाश करो सुखा का प्रकाश करो देश प्रदेश रखा बख्श करो जी तांतर पिता जी आप चनकार पिता जी हो सत बजार जी मथुरा जन जग तारण को अवतार बनाए हो जपयो जे अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन कर बनायो तांतर अर्जुन पातशाह जी शहीदों के सरकार गिरी महाराज जिन्हों ने सिख कौम वास्ते संसार वास्ते गरीब नवाज साढ़े सारे दुख अपनी चोरी पा गरीब नवाज उन्होंने साढ़े वास्ते जो कुर्बानी की दतार उन्होंने सच्चे पातशाह जी असं याद करते हैं दतार जी संसार भर दिन संगत आदि पुत्र चरण पत्थियां आप चरण हारियां पारी तार कृपा करो उन्होंने सच्चे पातशाह जी मेहनत कराओ गरीब नवाज गुरु साहबा दिया दिखा जातों का धनवाद करते हैं उन्हें दसाए मार्ग में उन्होंने चलाए पंथ में उन्होंने पाया पूर्णियों अपनाने वास्ते चलने वास्ते गरीब राज सिख कौम खास संबंध गरीब राज समर्थ बख्शो गरीब राज कृपा करो उन्होंने इसे पातशाह जी पाया पूर्ण चलने वास्ते सानू सारे बल बुद्धि बख्शो ताकत बख्शो अति कृपा करो दतार जी असी उन्होंने पाया पूर्ण चल के उन्होंने धनवाद कर सकिए कृपा करो दतार मेहर करो सिख कौम खास संबंध में गरीब राज के नौजवानों उन्होंने सारे मार्ग अपनाने बल बुद्धि बख्शो भावना ही दास बख्शो कृपालता करो जी गरीब राज मेहर करो सच्चे पातशाह जी हो दतार अमृत वेत लैके दरते आई हैं सात संगत हाजिर दर प्रवान करो घड़िया लिखे लाओ संगत दरते फुर पेटा प्रवान शुभकामना पूर्ण करो जी बीमारी कृपा करो आज बखिया दरता लंगर की तुर सवार प्रवान करनी आपके चरणा सेवा करने सारे टहरिया सिंघा सिंघणियां चंद्रूसी बख्शो चाटी कला बख्शो सदा ही इसे तरह अपने चरणा सेवा की भावना बखरी पालता करो कृपा करो गरीब नवाज हे दतार जी हो खास संबंध में सिख कौम एकता स्वाग प्यार जी बख्शे करके सतगुरु दास बख्शो चानन जोड़ो गुरबाणी का प्यार बख्शे करके हर मैदान जुहान फतेह बख्शो की पालता करो जी गुरु जी बना कृपा दतार जी हो दूर दराज घर बैठिया लाइव कथा की सरण करी सारी संगत की हाजरियां प्रवान करो घड़िया लेकर दतार आवे कृपा की नहीं सकता उद्धम बख्शे
ਜਗਦਾਲ ਦੀ ਜਾਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੇਅੰਤ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਮਾਇਆ ਪੇਟਾ ਕਾਰੀ ਚਾਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਸਬਰ ਕਰੋ, ਕਾਰਜ ਵੱਧ ਵਧਦਾ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸਭਾ ਦਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ ਜੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਿਆ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਪੁਲਾ ਕਰਵਾਹੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਨਾਮੀ ਬਖਸ਼ ਕਰ ਬਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਕੀਰਤ ਦੁਆਰਾ ਜਮਤਾ ਵਾਸਤੇ ਆਗਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਰਹਿੰਦੇ ਘਰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਚੰਨਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਣਾਓ, ਸ਼ੋਧ ਦੇ ਪਿੱਤ ਸਵਾਲ ਨਿਕ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿ

मूर्ख अंधिया अंधी तात कह कह कहन कहाइन आप। महला पहला आखण औखा सुनन औखा आख ना जापी आख। एक आख आख है सब भाख शब्द भाख है अर्ध उर्ध दिन रात। जे क्यों हुए ता क्यों दिसै

0: प्रभु सिमरे से पुरख प्रदान
1: प्रभु सिमरे से बेमहताजे
0: प्रभु सिमरे से सर्व के राजे
1: प्रभु सिमरे से सुखवासी
0: प्रभु सिमरे सदा विनाशी
1: सिमरन ते लागे जिन आप दयाला
0: नानक जन की मंगे दवाला
1: प्रभु सिमरे से परोपकारी
0: प्रभु सिमरे तिन सब बलिहारी
1: प्रभु सिमरे से मुख सुहावे
0: प्रभु सिमरे तिन सुख बिहावे
1: प्रभु सिमरे तिन आत्म जीता
0: प्रभु सिमरे तिन निर्मल रीता
1: प्रभु सिमरे तिन आनंद कनेरे।

0: सिमरन कबू न चूरे।
1: प्रभ कै सिमरन हर गुणवाणी।
0: प्रभ कै सिमरन सहज समानी।
1: प्रभ कै सिमरन निःचल आसन।
0: प्रभ कै सिमरन कमल विगासन।
1: प्रभ कै सिमरन अनहद चुनकार।
0: प्रभ सिमरन कांत न पार।
1: सिमरै सेजन जिनको प्रभ मया।
0: नानक सिंजन सरनी पया।
1: हर सिमरन कर भगत प्रगटाए।
0: हर सिमरन लग भेद उपाय।
1: हर सिमरन भय सिद्ध जति दाते।
0: हर सिमरन नीचा कुंट जाते।
1: हर सिमरन तारी सब तरना।

0: हर जन हर हर जपै,
1: हर का भगत प्रगट नहीं छपै,
0: हर की भगत मुक्त बो करे,
1: नानक जन संके ते तरे,
0: पार जात ए हर को नाम,
1: काम तेन हर हर गुण गाम,
0: सब ते उत्तम हर की कथा,
1: नाम संत दर्द दुख लथा,
0: नाम की महिमा संत रिद बसै,
1: संत प्रताप दुष्ट सब नसै,
0: संत का संग वड भागी पाये।

0: जम का पाव व्यापे
1: अनिल जतन कर त्रिसन त्रापे
0: एक अनेक अगन नहीं बुझे
1: कोट उपाव दरगे ने सिझे
0: छूटस नाही ऊब प्याल
1: मुहे व्यापे माया जाल
0: अवर करतूत सगली जमडाने
1: गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने
0: हर का नाम जपत दुख जाए
1: नानक बोले सहज सुबाई
0: चार पदार्थ

0: सबसे ऊंचा।
1: जाका मन हुए सगल किरीना,
0: हर हर नाम तिन कट कट चीना।
1: मन अपने ते बुरा मिटाना,
0: देखे सगल से साजना।
1: दुख दुख जन सम दृष्टिता,
0: नानक पाप पुन नहीं लेपा।
1: निर्तन कौ तन तेरो नाव,
0: निथावे को नाव तेरा थाओ।
1: निमाने को प्रभ तेरो मान,
0: सगल कटा को देवो दान।
1: करण करावन हार स्वामी,
0: सगल कटा के अंतर जामी।
1: अपनी गतमित जान हो आपे,
0: आपन संग आप प्रभ राते।
1: तुमरी उस्तत तुम ते होए,
0: नानक अवर न जानस कोए।
1: सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म,
0: हर को नाम जप निर्मल करम।
1: सगल क्रिया में उत्तम क्रिया,
0: साध संग दुर्मत मल हिरिया।
1: सगल उद्दम में उद्दम पला,
0: हर का नाम जपो जी सदा।
1: सगल बाणी में अमृत बाणी,
0: हर को जस सुन रसन।

0: कवन मूर्ते कवन दृष्टानी
1: किंतु सात सवार सिगारिया
0: गर्प अगन में जिन्हें उबारिया
1: पार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध
0: पार जो बन भोजन सुख सूद
1: वृद्ध पे

0: बस न होवे,
1: जिसकी बस्त तिस आज्ञा रखे,
0: की आज्ञा माने मते,
1: उसते चौगन करे निहाल,
0: नानक साहिब सदा दयाल,
1: अनेक पात माया के हे।

0: करत गुमान।
1: अस्तर भगत साध की शरण,
0: नानक जब जब जीवे हर के चरण।
1: मिथ्या श्रवण पर निंदा सुने,
0: मिथ्या हस्त पर दर्प को हिरे।
1: मिथ्या नेत्र पेखत परत्रे रूपाद,
0: मिथ्या रसना भोजन अन स्वाद।
1: मिथ्या चरण पर बेकार कौतावे,
0: मिथ्या मन पर लोभ लुभावे।
1: मिथ्या तन नहीं पर उपकारा,
0: मिथ्या बास लेत बिगारा।
1: बिन बूझे मिथ्या सब पए,
0: सफल देह नानक हर हर नाम लये।
1: वृत्ति साकत की आरजरा,
0: साच बिना कह हो वत सूचा।
1: वृथा नाम बिना तन अंध,
0: कावता कह दुर्गंध।
1: बिन सिमरन दिन रैन वृथा बिहाय,
0: मेघ बिना ज्यो खेती जाए।
1: गोविंद भजन बिन वृथे सब काम,
0: जो कृपन के निरारक दाम।
1: तन तन तेह जन जे कट पस्यो हर नाओ,
0: नानक ताके बल बल जाओ।
1: रहत अवर कच अवर कुमावत,
0: मन प्रीत मुको कंडलावत।
1: जानन हार प्रभु परवीन,
0: बाहर पेख न काहू पीन।

0: सुख से सोई जय
1: मन आठ पहर ताका जस का बीच
0: जय प्रसाद तो सबको माने
1: मुक्ता को जस रसन बखाने
0: जय प्रसाद तेरा रहता तरम
1: मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म
0: प्रभजीत जप दर गय मन पावे
1: नानक पद से ती कर जावे
0: जय प्रसाद अरो कंचन देही
1: लिवला वो तस राम स्नेही
0: जय प्रसाद तेरा ओला रहत
1: मन सुख पावे हर हर जस कहत
0: जय प्रसाद तेरे सगल सिद्ध ठाके
1: मन सरनी पर

0: साधके संग मुख उजल होत,
1: साध संग मल सगली खोत,
0: साध के संग मिटे अपमान,
1: साध के संग प्रगटे सुज्ञान,
0: साध के संग बुझे प्रभ नेरा,
1: साध संग सब होत निबेरा,
0: साध के संग पाए नाम रतन,
1: साध के संग एक ऊपर जतन,
0: साध की महिमा बरने कौन प्राणी,
1: नानक साध की शोभा प्रभ महे समानी,
0: साध के संग अगोचर मिले,
1: साध के संग सदा प्रफुले,
0: साध के संग आवे बस पंचा,
1: साध संग अमृत रस पुंचा,
0: साध संग हुए सबकी रेन,
1: साध के संग मनोहर बैन,
0: साध के संग न कथमूतावे,
1: साध संग अस्थित मन पावे,
0: साध के संग माया ते पिन,
1: साध संग नानक प्रभ सुप्रसन्न,
0: साध संग दुश्मन समीत,
1: साधु के संग महापुनी,
0: साध संग किस यो नहीं बैर,
1: साध के संग न बीगा पैर,
0: साध के संग ना ही को मंदा,
1: साध संग जाने परमानंदा,
0: साध के संग ना ही हाँ ताप,
1: साध के संग तैसा व्याप,
0: आपे जाने साध बढ़ाई,
1: नानक साध प्रभु बने आई,
0: साध के संग ना कभू तावे,
1: साध के संग सदा सुख पावे,
0: साध संग बस अगोचर रहे,
1: साधु के संग अजर सहे,
0: साध के संग बसै थान ऊंचे,
1: साधु के संग महल पहुंचे,
0: साध के संग दृढ़ सब धर्म,
1: साध के संग केवल पार ब्रह्म,
0: साध के संग पाए नाम निदान,
1: नानक साधु के कुर्बान,
0: साध के संग सब कुल उदार,
1: साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तार,
0: साधु के संग सो तन पावे,
1: जिस संते सब को वरसावे,
0: साध संग धर्मराय करे सेवा,
1: साध के संग शोभा सुर देवा,
0: साधु के संग पाप पलायन,
1: साध संग अमृत गुण गायन,
0: साध के संग सर्व थान गम,
1: नानक साध के संग सफल जन्म,
0: साध के संग नहीं कचकाल,
1: दर्शन पेटत होत निहार,
0: साध के संग कलुखत हरे,
1: साध के संग नरक पर हरे,
0: साध के संग यहाँ उहाँ सोहेला,
1: साध संग बिछड़त हर मेला,
0: जो इच्छा सोई फल पावे,
1: साध के संग न बिरथा जावे,
0: पार ब्रह्म साध रिद बसे,
1: नानक उदरे साध सुन रसे,
0: साध के संग सुनो हर नाओ,
1: साध संग हर के गुण गाओ,
0: साध के संग ना मन ते बिसरे,
1: साध संग सर पर निस्तरे,
0: साध के संग लगे प्रभ मीठा,
1: साधु के संग कट कर डीठा,
0: साध संग पै आज्ञाकारी,
1: साध संगत पई हमारी,
0: साध के संग मिटे सब रोग,
1: नानक साध पेटे संजोग,
0: साध की महिमा भेद न जाने,
1: जिता सुने ते ता बखियाने,
0: साध की उपमा ते गुण ते दूर,
1: साध की उपमा रही भरपूर,
0: साध की शोभा का ना ही अंत,
1: साध की शोभा सदा बेअंत,
0: साध की शोभा ऊंच ते ऊंची,
1: साध की

0: अष्टपदी
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप
0: जैसे जल में कमल आलेप
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोष
0: जैसे सूर सरप को शोक
1: ब्रह्म ज्ञानी का दृष्ट समान
0: जैसे राज रंग को लागे तुल पवान
1: ब्रह्म ज्ञानी का तीरज एक
0: जो बसता को खोदा को

0: संग सगल उदार
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी जप सगल संसार
0: ब्रह्म ज्ञानी का एक रंग
1: ब्रह्म ज्ञानी के बस प्रभ संग
0: ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार
1: ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा सज्जागत
1: ब्रह्म ज्ञानी अम्बुद त्यागत
0: ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद
1: ब्रह्म ज्ञानी के घर

0: ज्ञानी हुए अचिंत
1: ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत
0: ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रव्याप
1: ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप
0: ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है
1: ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए
0: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर
0: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे
1: ब्रह्म ज्ञानी का सगल मनमाहे
0: ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद
1: ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश
0: ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाए अध्याखर
1: ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर
0: ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने
1: ब्रह्म ज्ञानी की गातु ब्रह्म ज्ञानी जाने
0: ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार
0: ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता
1: ब्रह्म ज्ञानी सद जीव नहीं मरता
0: ब्रह्म ज्ञानी मुग्ध जुग जी का दाता
1: ब्रह्म ज्ञानी पूरन पुरख विदाता।

0: कोट में देखो ऐसा अपरस
1: वैष्णो सोजस ऊपर सो परसान
0: की माया से हुए पिन
1: कर्म कर्त हुए नह कर्म
0: वैष्णो का निर्मल धर्म
1: काहो फल की इच्छा नहीं बाँचे
0: केवल भगत कीर्तन संग्रह
1: मन तन अंतर सिमरन गोपाल
0: सब ऊपर हो वत कृपा
1: आप दृढ़ अवर नाम जपावे
0: नानक वैष्णो परम गत पावे
1: भगवती भगवंत भगत का रंग
0: सगल त्याग दुष्ट का संग
1: मन ते बिनसै सगला परम
0: कर पूजा सगल पार ब्रह्म
1: साध संग पापा मल खोवे
0: इस भगवती की मत उत्तम होवे
1: भगवंत की टहल करे नित नीत
0: मन तन अर्पय बिसन परीत
1: हर के चरण हृदय बसावे
0: नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे
1: सो पंडित जो मन प्रबोध
0: राम नाम आत्म में सुध
1: राम नाम सार रस पीवे
0: पंडित के उपदेश जग जीवे
1: हर की कथा हृदय बसावे
0: तो पंडित फिर जो नया वे
1: वेद पुराण समृत बुझे मूल
0: सुखम में जाने अस्तूल
1: जो वर्णा को दे उपदेश
0: नानक उस पंडित को सदा देश
1: बीज मंत्र सर्व को ज्ञान
0: जो वर्णा में जपे को ना
1: जो जो जपे तिसकी गत होए
0: साध संग पावे जन कोए
1: कर कृपा अंतर उतारे
0: बस प्रेत मुक्त पाथर को तारे
1: सर्व रोग का औखद नाम
0: कल्याण रूप मंगल गुण गाम
1: कहो जुगत कित न पाई है धर्म
0: नानक किस मिले जिस लिखिया दुर्कर्म
1: जिसके मन पार ब्रह्म का निवास
0: जिसका नाम सत रामदास
1: आत्म राम तिस नदरी आया
0: दास जसंतन पाए तिन पाया
1: सदा निकट निकट हर जान
0: सो दास सर गए परवान
1: अपने दास को आप कृपा करे
0: इस दास को सब सो जी पर है
1: सगल संग आत्म उदास
0: ऐसे जुगत नानक रामदास
1: रब की आज्ञा आत्म हितावे
0: जीवन मुक्त सो कहावे
1: तैसा हरख तैसा सोग
0: सदा अनंत नहीं बियोग
1: तैसा स्वर्ण तैसी उस्माटी
0: तैसा अमृत तैसी बिखाटी
1: तैसा मान तैसा अभमान
0: तैसा रंक तैसा राजान
1: जो वर्ताए साई जुगत
0: नानक ओ पुरख कहिए जीवन मुक्त
1: पार ब्रह्म के सगले ठाओ
0: जिस जिसका रख है तैसा तिन्नाओ
1: आपे करण करावन जोग
0: पावे सोई पुन हो
1: पसरे आप होए अनंत रंग
0: लखे न जाए पार ब्रह्म के रंग
1: जैसी मत्ते तैसा

0: सदी।
1: कई कोट होए पुजारी,
0: कई कोट आचार व्यवहारी,
1: कई कोट पर तीरथवासी,
0: कई कोट पन पर मैं उदासी,
1: कई कोट वेद के श्रोते,
0: कई कोट तपीसर होते,
1: कई कोटातम ध्यान तारे,
0: कई कोट कब का विचारे,
1: कई कोट नवतन नाम त्यावे,
0: नानक करते का अंत न पावे,
1: कई कोट पे अभिमानी,
0: कई कोट अंध अज्ञानी,
1: कई कोट कृपन कठोर,
0: कई कोट अपेग आत्म निखोर,
1: कई कोट पर दर्भ गुहरे,
0: कई कोट पर दुख ना करे,
1: कई कोट माया श्रम माहे,
0: कई कोट पर देश प्रमाहे,
1: जित लावो तित लगना,
0: नानक करते की जान है करता रचना,
1: कई कोट सिद्ध जद जोगी,
0: कई कोट राज रस भोगी,
1: कई कोट पंखी सर्प उपाय,
0: कई कोट पात्र बिरख निप जाए,
1: कई कोट पवन पानी बैसंतर,
0: कई कोट देश भो मंडल,
1: कई कोट सरसियर सूर नखत्र,
0: कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र,
1: सगल समग्री अपने सूत तारे,
0: नानक जिस जिस पावे तिस तिस निस्तार,
1: कई कोट राजस्ताम सातक,
0: कई कोट वेद प्राण समृत और शासत,
1: कई कोट की ये रतन समुद्र,
0: कई कोट नाना प्रकार जंत,
1: कई कोट की ये जीवे,
0: कई कोट गिरी मेर स्वर थीवे,
1: कई कोट जंक नर पिसाच,
0: कई कोट भूत प्रेत सुकर मृगाच,
1: नेरे सबूत दूर,
0: नानक आप लिप्त रहया भरपूर,
1: कई कोट पाताल के वासी,
0: कई कोट नरक स्वर्ग निवासी,
1: कई कोट जन्मे जीवे मरे,
0: कई कोट बहुत जोनी फिरे,
1: कई कोट बैठत ही खाहे,
0: कई कोट काले थक पाए,
1: कई कोट की ये तनवंत,
0: कई कोट माया मह चिंत,
1: जय जय पाणा तय तय राखे,
0: नानक सब किस प्रभ के हाथे,
1: कई कोट पए बैरागी,
0: राम नाम संग तन लिव लागी,
1: कई कोट प्रभ को खोजनते,
0: आत्म में पार ब्रह्म लहंते।

0: आकाश ब्रह्मांड
1: कई कोट होए अवतार
0: कई जगत कीनो विस्तार
1: कई बार पसरे पासार
0: सदा सदा एक एक अहंकार
1: कई कोट कीने वो पात
0: प्रपते हुए प्रभ माहे समात
1: अंत न जाने कोई
0: आपे आप नानक प्रभ सोए
1: कई कोट पार ब्रह्म के दास
0: तिन हो वतात्म परगास
1: कई कोट तत् के बेते
0: सदा निहारे को नेत्रे
1: कई कोट नाम रस पीवे
0: अमर पय सत सदी जीवे
1: कई कोट नाम गुण गावे
0: आत्म रस सुख से

0: अंतराज विमान
1: सो नरपाती हो वत स्वान
0: जो जाने में जो बनवंत
1: सो हो वत दुष्टा का जानत
0: आपस को कर्मवंत कहावे
1: जन्म मरे बहु जोन प्रमावे
0: धन पूम का जो करे गुमान
1: सो मूर्ख अंधा अज्ञान
0: कर कृपा जिसके हृदय गरीब बसावे
1: नानक इहा मुक्त आज्ञा सुख पावे
0: धनवंता होय कर गरबावे
1: तरण स्वान का संग न जावे
0: बोलस कर मानुक ऊपर करे
1: पल भीतर ताका होए विनाश
0: सबसे आप जाने बलवंत
1: इनमें हुए जाए पसमंत
0: किसे न बदे आप अहंकारी
1: कर्म राय तस करे खुआरी
0: गुर प्रसाद जाके मिटे अभिमान
1: सोजन नानक दगे परवान
0: कर्म करे हो तारे
1: श्रम पावे सगले बिरथारे
0: अनेक तपस्या करे अहंकार
1: नरक सुर फिर अवतार
0: अनेक जतन कर आत्म नहीं द्रवे
1: हर दर गय को कैसे गवे
0: आपस को जो भला कहावे
1: उसे भलाई निकट न आवे
0: सर्फ की रेंजा का मन होए
1: कहो नानक ताकि निर्मल सोए
0: जब लग जाने मुझते कुछ होए
1: तब इस को सुख ना ही कोई
0: जब ए जाने मैं किश करता
1: तब लग गर्भ जोन में फिरता
0: जब तारे को बैरी मीत
1: तब लग नेचल ना ही चीत
0: जब लग मोह मगन संग माए
1: तब लग धर्म राय देश जाए
0: रब कृपा ते बंधन टूटे
1: गुर प्रसाद नानक हाँ छूटे
0: सहस कटे लग को उठता वे
1: रक्त ना आवे माया पाछे पावे
0: अनेक भोग भिख्या के करे
1: मैं तृप्तावे खप खप मरे
0: बिना संतोख नहीं को राजे
1: सुपन मनोरथ बिरथे सब काजे
0: नाम रंग सरब सुख होए
1: बट भागी किसे पराप

0: अपन विस्तार
1: सब कुछ उसका ओ करना हार
0: से पिन कहो किछ होए
1: अंत नंतर एक कैस होए
0: अपने चलत आप करने हार
1: कवता कर रंग अपार
0: मन में आप मन अपने माहे
1: नानक कीमत कह न जाए
0: सत सत सत प्रभ स्वामी
1: गुर प्रसाद किने वख्यानी
0: सच सच सत सब कीना
1: मुदे किने बिरले चीना
0: भला भला भला तेरा रूप
1: सुंदर अपार अनूप
0: निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी
1: कट कट सुनी श्रवण बख्यानी
0: पवित्र।

0: जमते नहीं छुटे।
1: संत के दुखन सुख सब जाए,
0: संत के दुखन नरक में पाए।
1: संत के दुखन मत होए मलीन,
0: संत के दुखन सो बाते हीन।
1: संत के हते को रखे न कोए,
0: संत के दुखन थान प्रष्ट होए।
1: संत कृपाल कृपा जे करे,
0: नानक संसंग निंदक पीतरे।
1: संत के दुखन ते मुख पवे,
0: संतन के दुखन काग जो लवे।
1: संतन के दुखन सर्प जोन पाए,
0: संत के दुखन त्रिगत जोन किरमाए।
1: संतन के दुखन तृष्णा में जले,
0: संत के दुखन सब को चले।
1: संत के दुखन तेज सब जाए,
0: संत के दुखन नीच निचाए।
1: संत दुखी कथाओं को नाहे,
0: नानक संत पावे तो विगत पाए।
1: संत का निंदक महत ताई,
0: संत का निंदक चिंतित कर न पाए।
1: संत का निंदक महत्यारा,
0: संत का निंदक परमेश्वर मारा।
1: संत का निंदक राज ते हीन,
0: संत का निंदक दुखिया और दीन।
1: संत के निंदक को सर्व रोग,
0: संत के निंदक को सदा बिजोग।
1: संत की निंदा दुख मह दुख,
0: नानक संत पावे तो उसका भी हुए मोक।
1: संत का दुखी सदा पवित,
0: संत का दुख किसे का नहीं मित।
1: संत के दुखी को डान लगे,
0: संत के दुखी को सब त्याग।
1: संत का दुखी महा अहंकारी,
0: संत का दुखी सदा बिकारी।
1: संत का दुखी जन्म मरे,
0: संत की दुख ना सुख चेटर।
1: संत के दुखी को ना ही ठाओ,
0: नानक संत पावे तो ले मिलाए।
1: संत का दुखी अत बीच से टूटे,
0: संत का दुख किसे काल न पहुँचे।
1: संत के दुखी को ध्यान प्रमाइए,
0: संत का दुखी उजड़ पाई है।
1: संत का दुखी अंतर ते था,
0: जो सांस पे मना मेर तक की लो था।
1: संत के दुखी की जड़ किचना है,
0: आपन बीज पे ही का है।
1: संत के दुखी को अवर न रखन हार,
0: नानक संत पावे तो ले उबार।
1: संत का दुखी ओ बिल लाए,
0: जो जल बिहून मछली तड़फड़ाए।
1: संत का दुखी भूखा नहीं राजे,
0: जो पावो की धन त्रापे।
1: संत का दुखी छुटा अकेला,
0: जो बुआर दिन खेत माए दुहेला।
1: संत का दुखी धर्म ते रहत,
0: संत का दुखी सद मिथ्या कहत।
1: कीर्त निंदक का तुर ही प्या,
0: नानक ज्योतिष पावे सोई थया।
1: संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए,
0: संत के दुखी को दरगे मिले सजाए।
1: संत का दुखी सदा सहकाई है,
0: संत का दुखी ना मरे ना जीवाई है।
1: संत के दुखी की पूजा ना आशा,
0: संत का दुखी उठ चले निराशा।
1: संत का दुख ना दृष्टा कोए,
0: जैसा पावे तैसा कोई होए।
1: पया कीर्तना मेटा कोए,
0: नानक जाने सच्चा सोए।
1: सब घट तिसके ओ करना हार,
0: सदा सदा तिसको नमस्कार।
1: रब की उस्तुत करो दिन रात,
0: इसे तेहा वो सास गिरास।
1: सब कुछ वर्ता तिसका किया,
0: जैसा करे तैसा कुथिया।
1: अपना खेल आप करना हार,
0: दूसर कौन कहे विचार।

0: राष्ट्रपति
1: मानु की टेक वृत्ति सब जान
0: देवन को एक है भगवान
1: कह दिए रहे अघाए
0: कौन कृष्णा लागे आए
1: मारे रखे कुआ
0: मानु के कृष्णा ही हाथ
1: किसका हुक्म बूझ सुखोए
0: किसका नाम रखंठ परोए
1: सिमर सिमर सिमर प्रभु सोए
0: नानक बिघन न लागे कोए
1: सतमन में

0: अब जब ये हर बिंद
1: हर हर कर्म सर्वन हर कथा
0: हर दरगह नानक उजल मथा
1: भागी ते जन जग माहे
0: सदा सदा हर के गुण गाहे
1: राम नाम जो करे विचार
0: ते तन मंत गनी संसार
1: मन तन मुख बोले हर मुखी
0: सदा सदा जानो ते सुखी
1: एको एक एक पछाने
0: इत उत्कियो सो जी जाने
1: नाम संग जिसका मन मान्या
0: नानक ने निरंजन जान्या
1: गुर प्रसाद अपन आप सुझे
0: इसकी जानो तृष्णा बुझे
1: साध संग हर हर जस कहत
0: सर्व रोग हर जन रहत
1: अनदिन कीर्तन केवल बखियान
0: कृष्ण में सोई निर्वाण
1: एक ऊपर जिस जन की आशा
0: जिसकी कटिया जम की फासा
1: पार ब्रह्म की जिस मन भूख
0: नानक से न लागे दुख
1: जिसको हर प्रभु मन चितावे
0: तो संत सुहेला नहीं डुलावे
1: प्रभु अपना कृपा करे
0: सो सेवक को किससे डरे
1: जैसा सत तैसा दृष्टाया
0: अपने कार्य में आप समाया
1: सोदत सोदत सोदत सिद्धिया
0: गुरु प्रसाद तत्व बुझिया
1: जब देखो तब सब किस मूल
0: नानक सो सुख
1: किस जन्म ने किस मरे
0: आपन चलित आप ही करे
1: आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट
0: आज्ञा सारी सारी सबसे
1: आपे आप सगल में आप
0: अनेक जुग त्रिज थाप उथाप
1: अविनाशी नाही किस खंड
0: धारण तारे ओ ब्रह्मण
1: अलखा पेहु पुरख प्रताप
0: आप जपाए त नानक जाप
1: जिन प्रभु जाता सो स्वभावंत
0: सगल संसार उदरे तिन मंत्र
1: प्रभु के सेवक सगल उदाहरण
0: प्रभु के सेवक दुख विसारण
1: आपे मेल लए कृपा
0: गुरु का शब्द जप पहे निहार
1: सेवा सोई लागे
0: जिसनो कृपा करे बड़ पागे
1: नाम जपत पावे विश्राम
0: नानक तिन पुरख को उत्तम कर
1: जो किच करे सो प्रभु के रंग
0: सदा सदा बसे हर संग
1: सुबह हो वैसो होए
0: करने हार पछाने सोए
1: प्रभु का किया जन मीठ लगाना
0: जैसा सा तैसा दृष्टाना
1: जिस तिन उपजे तिस माए समाए
0: सुख निदान हुन

0: अवर त्याग तू किसे सता।
1: जो कुछ करे सो ही सुखमान,
0: लख आए फिरे अजान।
1: कौन बस आए तेरे संग,
0: लख रहे रस लोग ही पतंग।
1: राम नाम जब हृदय माहे,
0: नानक पद से ही कर जाहे।
1: जिस वक्कर को लैन तू आया,
0: राम नाम संतन कर पाया।
1: तजब मान ले हो मन मो,
0: राम नाम हृदय में तो
1: लाग खेप संत संग चार।
0: अवर त्याग दिखिया जंजा,
1: धन धन कहे सब कोए।
0: मुख उज्जल हर दर गए सो।

0: सात संग हर कीर्तन गाइये,
1: अनेक विघनते साधु रखे,
0: हर गुण गाये अमृत रस चाखे,
1: उठ गई संत दरियाया,
0: शरण सुख नानक के पाया,
1: मृतक को जीवालन हाज,
0: भूखे को देवत अधा,
1: सर्व निधान जाकी दृष्टि माहे,
0: पूर्व लिखे का लहना पा,
1: सब किस तिस्काव करने जोग,
0: जिसमें दूसर हो न हो,
1: जब जन सदा सदा दिन रहनी,
0: सबके ऊंच निर्मल एक करनी।

0: प्रसन्न अष्टपदी
1: अविनाशी प्रभु मन में राख
0: मानु केतु प्रीत त्याग
1: इसते प्रे नाही किच कोए
0: सर्व निरंतर एको सोए
1: आपे बिना आपे दाना
0: गहर गंभीर गही सुजाना
1: पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद
0: कृपा निदान दयाल बख्शंद
1: साथ तेरे की चरनी पाओ
0: नानक के मन ए अनुराओ
1: मनसा पूरन सरना जो
0: जो कर पाया सोई हो
1: हरन परन जाका नेत्र फो
0: इसका मंत्र न जाने हो
1: अनंत रूप मंगल सब जाके
0: शोक सुनिए करता
1: राज में राज जोग में जोगी
0: सब में तपीसर गृह में भोगी
1: त्याय त्याय भगते सुख पाया
0: नानक तिस पुरख का की नय अंत
1: जाकी लीला कीमत नाहे
0: सगल देव हारे अवगाहे
1: पिता का जन्म के जाने पू
0: सगल परोए अपने सूत
1: सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे
0: जनदास नाम ते आवे से
1: तेरे गुण में जाको परमाए
0: जन्म बने फिर आवे जाए
1: ऊंच नीच तिसके स्थान
0: जैसा जनावे तैसा नानक
1: नाना रूप नाना जाके रंग
0: नाना पेक करे रंग
1: नाना विद के नो विस्तार
0: प्रभ विनाशी एक कंकार
1: नाना चलित करे खिन माहे
0: पूरे हो पूरन सब ठाए
1: नाना विद कर बनत बनाई
0: अपनी कीमत आपे पाई
1: सब घट तिसके सब तिसके ठाओ
0: जब जब जीवे नानक हरनाओ
1: नाम के तारे सगले जंत
0: नाम के तारे कण ब्रह्मांड
1: नाम के तारे सिमरत वेद पुराण
0: नाम के तारे सुनन ज्ञान
1: नाम के तारे आकाश पाताल
0: नाम के तारे सगले आकार
1: नाम के तारे पुरिया सब पवन
0: नाम के समुद्रे सुन श्रवण
1: कर कृपा जी सपने नाम लाए
0: नानक चौथे पद में सो जन गत पाए
1: रूप सत जा का सत स्थान
0: पुरख सत केवल प्रदान
1: करतूत सत सत जा की बाणी
0: सत पुरख सब माए समाणी
1: सत कर्म जा की रचना सत
0: मूल सत सत उत्पत
1: सत करनी निर्मल निर्मली
0: जिसे बुझाए दिल सब फली
1: सत नाम प्रभु का सुखदाई
0: विश्वास सत नानक गुर ते पाए
1: सत वचन साधु उपदेश
0: सत जन जा कर दे प्रवेश
1: सत निर्थ बुझे जे कोए
0: नाम जपता की गत होए
1: आप सत किया सब सत
0: आपे जाने अपनी मित गत
1: जिसकी सृष्ट सो करने हार
0: अवर न बूझ कर विचार
1: करते की मित न जाने किया
0: नानक जो तिस पावे सो वर्तिया
1: विस्मन विसम पहे विस्मा
0: जिन बुझा तिस आया स्वाद
1: गुर के रंगराज जन रहे
0: गुर के बचन पदार्थ रहे
1: होए दाते दुख काटन हार
0: जाके संग तरह संसार
1: उनका संग जन का सेवक सो वड़ पागी
0: जन के

0: सत परसनहार,
1: पूजा सत सत सेवदार,
0: दर्शन सत सत पेखनहार,
1: नाम सत सत ध्यानहार,
0: आप सत सत सबधारी,
1: आपे गुण आपे गुणकारी,
0: शब्द सत सत प्रवक्ता,
1: सुरत सत सत जस सुनता,
0: पूजन हार को सत सब होए,
1: नानक सत सत प्रभ सोए,
0: सत स्वरूप हृदय जिन मान्या,
1: करन करावन तीन मूल पछान्या,
0: जा कर दे विश्वास प्रभ आया,
1: सत ज्ञान तिस मन प्रगटाया,
0: पैते निर्भो होए बसाना,
1: जिस ते उपजया तिस माहे समाना,
0: बस्त महले बस्त गडाई,
1: नाको पहनना कहना जाई,
0: बूझे बूझन हार बिबे,
1: नारायण मिले नानक एक,
0: ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी,
1: ठाकुर का सेवक सदा पुजारी,
0: ठाकुर के सेवक के मन प्रति,
1: ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत,
0: ठाकुर को सेवक जाने संग,
1: का सेवक नाम के रंग,
0: सेवक को प्रभ पालन हारा,
1: सेवक की राखे निरंकारा,
0: सो सेवक जिस दया प्रभ तारे,
1: नानक सो सेवक साथ साथ समा,
0: अपने जन का पर्दा टाके,
1: अपने सेवक की सर पर रखे,
0: अपने दास को दे बढ़ाई,
1: अपने सेवक को नाम जपा,
0: अपने सेवक की आपत रखे,
1: ताकि गत मित कोई न लाखे,
0: प्रभ के सेवक को कौन न पहुंचे,
1: प्रभ के सेवक ओछते ऊँचे,
0: जो प्रभ अपनी सेवा लाया,
1: नानक सो सेवक दैर इस प्रगटाया,
0: की कीरी में कर रखे,
1: पसम करे लश्कर कोट ला,
0: जिसका सास न काट त्या,
1: आपको राखर दे कर हाथ,
0: मान जतन करत मौपा,
1: किसके कर्तव्य तेजा,
0: मार न रखे अवर न कोए,
1: सर्व दिया का रखा सोए,
0: काहे सोच करे रे प्राणी,
1: जप नानक प्रभ अलख विडानी,
0: बारिंग बार बार प्रभ जपी,
1: अमृत एहो मंत्र पिए,
0: नाम रतंजन गुरमुख पाया,
1: किस किस अवर ना ही दृष्टाया,
0: नाम तन नामो रूप रंग,
1: नामो सुखर नाम का संग,
0: नाम रस जो जन तृप्ता ने,
1: मंतन नामे नाम समाने,

0: तो जाने
1: रबने का हुक्म पछाने
0: इसकी महिमा कौन बखानो
1: इसका गुण कह एक न जानो
0: आज प्रह प्रभ से हजूरे
1: कहो नानक से जन पूरे
0: मन मेरे तिन की ओट ले हो
1: मन तन अपना तिन जन दे
0: जिन जन अपना प्रभु पचाता
1: जन सर्व थोक का दाता
0: इसकी शरण सर्व सुख पावे
1: इसके दस पाप मिटावे
0: अवर से आनब सगली छा
1: जन की तू सेवा ला
0: आवन जान न हो भी तेरा
1: नानक
0: तिस जन के पूजो सद
1: सतपुरख जिन जाने
0: सतगुर तिसका नाओ तिसके संग सिख उदर नानक हर गुण गाओ अष्टपदी
1: सतगुर सिख की करे प्रतपा
0: सेवक को गुर सदा दया
1: सिख की गुर दुर्मत मलहिरे
0: गुर बचनी हर नाम उचरे
1: सतगुर सिख के बंधन काटे
0: गुर का सिख विकार से हटे
1: सतगुर सिख को नाम तन दे
0: गुर का सिख बड़ पागी है
1: सतगुर सिख का हलत पलत सवार है
0: नानक सतगुर सिख को जिये नाल समारे
1: गुर के ग्रह सेवक जो रहे
0: गुर की आज्ञा मन में सहे
1: आपस को कर कछना जनावे
0: हर हर नाम हृदय सत्या
1: वे सतगुर के पास
0: सेवक के कार्य रा
1: सेवा करत होए ने कामी
0: इसको होत प्राप्त स्वामी
1: अपनी कृपा जिसाप करे
0: नानक सो सेवक गुर की मतले
1: इस विश्वे गुर का मन

0: आप नहीं कष्ट पर
1: सैसिया न पलाया न जाइये
0: नानक ऐसा गुरबट पागी पाइये
1: सफल दर्शन पे खत पुनीत
0: पर चरणगत निर्मल रीत
1: संग्राम गुण रवे
0: और ब्रह्म की दरगे गवे
1: सुनकर वचन करन अघाने
0: मन संतो का तंपतिया
1: पूरा गुरु रखियो जा कामंत्र
0: गुण
1: बेअंत कीमत नहीं पा
0: नानक जिस पावे तिस लय मिला
1: एक उस्तत अनेक
0: सतपुरख पूरन विवेक
1: काहू बोल न पहुंचत प्राणी
0: अगम गोचर प्रभ निर्वाणी
1: निराहार निर्वैर सुखदाई
0: ताकि कीमत किन्हे न पाई
1: अनक भगत बंधन नित करे
0: चरण कमल हृदय सिमरे
1: सदबलहारी सतगुरु अपने
0: नानक जिस पर साध ऐसा प्रभ जप
1: एहो हर रस पावे जन कोए
0: अमृत पीवे अमर सो होए
1: उस पुरख का नाही कदे विनाश
0: जाके मन प्रभ ते गुंता
1: आठ पहर हर का नाम ले
0: सच उपदेश सेवक को दे
1: मोह माया के संग न ले
0: हर हर एक
1: अंधकार दीपक प्रगा से
0: नानक परमो दुख ते तेना
1: कपत माहे ठांड वरताई
0: अनंत पया दुख ना ठेपाई
1: जन्म मरण के मिटे अंदेसे
0: साधु के पूर्ण उपदेश
1: पहुंचू का निरपोहे बसे
0: सगल ब्याज मन ते खै नसे
1: जिसका साथ इन कृपा तारी
0: साध संग जपना मुरारी
1: चित पाई चुके परम गवन
0: सुन नानक हर हर जस रवन
1: निर्गुण आप सरगुण भी ओही
0: कला साजन सगली मोही
1: अपने चरित प्रभ आप बनाए
0: अपनी कीमत आपे पाए
1: हर बिंदु जाना ही कोई
0: निरंतर को सोए
1: ओत पोत रवे रूप रंग
0: परगा।

0: सो प्रभ समरथ
1: दृढ़ कर कहो नाम हर वस्त
0: एतन संचो हो वो भगवान
1: संत जना का निर्मल मंत
0: एक आसरा को मन माहे
1: रोग नानक मिट जाए
0: जिस तन को चार कुंट उठता वे
1: सो तन हर सेवा से पावे
0: जिस सुख को नित बाचे मी
1: सो सुख साधु संग परी
0: जिस शोभा को करे पली करनी
1: सा शोभा पज हर की सरनी
0: अनेक उपावी रोग न जाए
1: रोग मिटे हर औखद लाए।

0: अष्टपदी जाचक जन जाचय प्रवदान
1: कर कृपा देवो हरना
0: साधना की मांगो तू
1: पार ब्रह्म मेरे सरदा पू
0: सदा सदा प्रभु के गुण गाओ
1: सास सास प्रभु तुम्हें त्याग
0: चरण कमल स्यों लागे प्रीत
1: भगत करो प्रभु की नितनी
0: एक ओट एको आधार
1: नानक मांगे नाम प्रभु सा
0: प्रभु की दृष्ट महा सुख होए
1: हरस पावे बिल्ला कोए
0: जिन चाख्या से जन तृप्ता ने
1: पूरन पुरुख नहीं डोलाने
0: सुपर परे प्रेम रस रंग
1: जचाओ साध कैसा
0: परे शरण आन सब त्याग
1: प्रकाशन दिन
0: भागी जपया प्रभु सोए
1: नानक नाम रते सुख होए
0: सेवक की मनसा पूरी पई
1: सदगुरु ते निर्मल मत लई
0: जन को प्रभु होयो दया
1: इनो सदा निहार
0: बंधन काट मुकत जन पया
1: जन्म मरण दुख भ्रम गया
0: इच पुन्नी श्रद्धा सब पूरी
1: रब रहया सत्संग हजूरी
0: जिसका साथ नि मिलया मिलाए
1: नानक भक्ति नाम समाए
0: सो क्यों बिसरे जे काल न पाने
1: सो क्यों बिसरे जे किया जाने
0: सो क्यों बिसरे जिन सब किस दिया
1: सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया
0: सो क्यों बिसरे जे अगन में रखे
1: गुरु प्रसाद को बिरला लाखे
0: सो क्यों बिसरे जे बिकते काढ़े
1: जन्म जन्म का टूटा गाढ़े
0: गुरु पूरे तत ए बुझाया
1: नाना नंजन से आया
0: साजन संत करो एव काम
1: मान त्याग जपो हर नाम
0: सिमर सिमर सिमर सुख पाओ
1: आप जपो अग्रह नाम जपाओ
0: भगत पाया तरिये संसार
1: बिन भक्ति तन हो सीछा
0: सर्व कल्याण सुख निधना
1: बूढ़े जात पाए विश्राम
0: सगल दुख का हो अतना
1: नानक नाम जपो गुणता
0: उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ
1: मंथन अंतर ही सुहाओ
0: नेत्रों पे एक तरह सुख होए
1: मन विकसे साग चरण तो
0: भगत जना के मंथन रंग
1: बिल्ला को पावे
0: एक वस्तु दीजे करमाया
1: प्रसाद नाम जप लाया
0: ताकि उपमा कहीं न जाए
1: नानक रहया सर्व समाए
0: प्रभु बख्शन दीन दया
1: भगत विचल सदा कृपा
0: अनाथ नाथ गोविंद गोपाल
1: सर्व कटाक्ष रत प्रताप
0: आद पुरख कारण करता
1: भगत जना की प्राण दाता
0: जो जो पैसो हो पुनीत
1: भगत पाए लावे मन
0: हम निर्गुण यार नीच जान
1: नानक तुमरी शरण पुरख भगवान
0: सर्व वैकुंठ मुकुट मोक पाए
1: एक नेमक हर के गुण गाए
0: अनक राज भोग बढ़ियाई
1: हर के नाम की कथा मन
0: वो भोजन का प्रसंगीत
1: रसना जपती हर हर नी
0: भली सो करनी सो बात नवंत।

0: तब कहते होता,
1: जब धारी आपन सुन समाज,
0: तब बैर विरोध के संकमा,
1: जब इसका भरण चिन्ह न जापत,
0: तब हरक शोकों किसे व्यापत,
1: जब अपन आप पार ब्रह्म,
0: तब मोह कहा किस होवत परम,
1: आपन खेल आप प्रति जा,
0: नानक करने हार न दूजा,
1: जब होवत प्रभ केवल तनी,
0: तब बंद मुक्त को किसको गनी,
1: जब एक है हर अगम्य पार,
0: तब नरक स्वर्ग को कहो पता,
1: जब निर्गुण प्रभ छह सुबाई,
0: तब सिर सकत कहो किस खाए,
1: जब अपने आप अपनी ज्योत तर,
0: तब कवन निरर कवन कत डरे,
1: अपन चलता कर नेहार,
0: नानक ठाकुर अगम अपार,
1: अविनाशी सुख अपने आसन,
0: कै जन्म मरण को कहा विनाशन,
1: जब पूरन करता प्रभ सोए,
0: तब जम की त्रास कहो किस होए,
1: जब अवगत गोचर प्रभ एका,
0: तब चित्र गुपत किस पूछत लेखा,
1: जब नाह निरंजन गोचर गादे,
0: तब कवन छुटे कवन बंधन बाधे,
1: अपन आप ही अचरजा,
0: नानक अपन रूप आप ही ऊपर जा,
1: जय निर्मल पुरख पुरख पत होता,
0: जय मैल कहो क्या होता,
1: जय निरंजन निरंकार निर्वाण,
0: जय कौन को मान कौन अभिमान,
1: जय स्वरूप केवल जगदीश,
0: जय छल छद्र लगत कौकी,
1: जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे,
0: जय किसे भू कवन तृप्तावे,
1: करन करावन करने हार,
0: नानक करत देखा नहीं सुमार,
1: जब अपनी शोभा आपन संग बनाई,
0: तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई,
1: जय सर्व कला आपे बरबीन,
0: जय वेद कदेव कहा पूछी,
1: जब अपन आप उड़ता रहे,
0: सगन कहा विचारे,
1: जय अपन ऊंच अपन अपने रा,
0: जय कौन ठाकुर कौन कहिए शेरा,
1: मन विषम रहे बिस्मात,
0: नानक अपनी गत जानू,
1: जय चल छेद अपेद समाया,
0: कहा किसे व्यापत माया,
1: आपस को आपे आदेश,
0: ते गुण का नाही परवेश,
1: जय का एक एक भगवंता,
0: जय कौन चिंत किस लागे चिंता,
1: जय अपन आप पतियारा,
0: जय कौन खदे कौन सुनने हारा,
1: मोह बेअंत उठते ऊंचा,
0: नानक आपस को आपे पहुंचा,
1: जय आप रचे, जय आप रचियो पर पंचयकार,
0: हे गुरु में किनो विस्तार,
1: पापुन ते पही कहावत,
0: को निरक्ष को सुरक्ष।

0: दिखाई
1: नानक जन सो दिखाई
0: सो अंतर सो बाहर अनंत
1: घट व्याप रहा भगवंत
0: तरण माए आकाश पया
1: सर्व लोक पूर्ण प्रताप
0: बंतन पर्वत है पार ब्रह्म
1: जैसी आज्ञा तैसा क्रम
0: कौन पानी बैसंतर माहे
1: चार कुंड दहरी से समाये
0: तिससे भिन्न नहीं कोठाओ
1: प्रसाद नानक सुपाओ
0: वेद पुराण सिमृत में देख
1: सस्य सूर नक्षत्र में एक
0: वाणी प्रभु की सबको बोल
1: आप

संत का दुखी सदम थिया कहत, किरत निंदक का तुर ही पाया, नानक ज्यो तिस भावै सोई थिया। संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दुखी को दरगाह मिले सजाए। संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी ना मर ना जीवाई है। संत के दुखी की पूजा ना आसा, संत का दुखी उठ चले निराशा। संत कह दुख ना त्रष्टै कोई, जैसा पावै तैसा कोई होए। पया किरत ना मेटै कोई, नानक जाने सच्चा सोए। सब घट तिसके सब घट तिसके ओ करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार। प्रभ की उस्तत करो दिन रात, तिस त्यावो सास गिरास। सब का शो वरतै तिसका किया, जैसा करे तैसा को थिया। अपना खेल आप करने हार, दूसर कौन कहे विचार। जिसनु कृपा करै तिस आपन नाम दे, बडभागी नानक जन से। सलोक तजो सियानप सुरजनौ, सिमरौ हर हर राय। एक आस हर मन रखौ, नानक दुख परम पहु जाए। अष्टपदी मानुख की टेक वृथि सब जान, देवन को एकै भगवान। जिसकै दिए रहे अघाए, बहुर न तृष्णा लागै आए। मारै राखै एको आप, मानुख कै किछु नाही हाथ। तिसका हुक्म बूझ सुख होए, तिसका नाम राख कंठ परोए। सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक बिघन न लागै कोए। उस्तत मन मैं कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार। निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सुहेला कर ले जियो। नैनो पेख ठाकुर का रंग, साध संग बिनसै सब संग। चरण चलो मार्ग गोबिंद, मिटै पाप जपिए हर बिंद। कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दरगै नानक ऊजल मथा। बटभागी ते जन जग माहे, सदा सदा हर के गुण गाहे। राम नाम जो करै विचार, से तनवंत गने संसार। मन तन मुख बोलै हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी। एको एक एक पछानै, इत उत कियो सोजी जानै। नाम संग जिसका मन मानिया, नानक तिनै निरंजन जानिया। गुरप्रसाद आपन आप सुझै, तिसकी जानो तृष्णा बुझै। साध संग हर हर जस कह तो, सर्ब रोग त्यो हर जन रह तो। आनंदन कीर्तन केवल बखियान, ग्रस्त मैं सोई निर्बान। एक ऊपर जिस जन की आसा, तिसकी कटिया जम की फासा। पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिसै न लागै दुख। जिस कौ हर प्रभ मन चित आवै, सो संत सुहेला नहीं डोलावै। जिस प्रभ अपना कृपा करै, सो सेवक कहो किस ते डरै। जैसा सा तैसा दृष्टाया, अपने कार्ज में आप समाया। सोदत सोदत सोदत सीजिया, गुरप्रसाद तत सब बूजिया। जब देखो तब सब किश मूल, नानक सो सूखम सोई असथूल। नह किश जन्मै नह किश मरै, आपन चले तो आप ही करै। आवन जावन दृष्ट आन दृष्ट, आज्ञाकारी धारी सब श्रेष्ठ। आपे आप सगल मह आप, अनेक जुगत रच थाप उथाप। अविनाशी नाही किश खंड, धारण धार रहे हो ब्रह्मांड। अलख अपेव पुरख परताप, आप जपाए त नानक जाप। जिन प्रभ जाता सो सुभावंत, सगल संसार उदर है तिन मंत। प्रभ के सेवक सगल उदाहरण, प्रभ के सेवक दुख बिसारण। आपे मेल लय कृपाल, गुरु का शब्द जप भय निहाल। उनकी सेवा सोई लागै, जिसनु कृपा करै बड़ भागै। नाम जपत पावै बिश्राम, नानक तिन पुरख को उत्तम कर मान। जो किश करै सो प्रभ कै रंग, सदा सदा बसाए हार संग। सहज सुभाए होवै सो होए, करणे हार पछाणै सोए। प्रभ का किया जन मीठ लगाना, जैसा सा तैसा दृष्टाना। जिस ते उपजे तिस माहे समाए, ओए सुख निधान उन्हों बन आए। आपस को आप दीनो मान, नानक प्रभ जन एको जान। सलोक सर्ब कला भरपूर प्रभ, बिरथा जानन हार। जाकै सिमरन उदरी है, नानक तिस बलहार। अष्टपदी टूटी गंडन हार गोपाल, सर्ब जियां पे प्रतपाल। सगल की चिंता जिस मन माहे, तिस ते बिरथा कोई नाहे। रे मन मेरे सदा हर जाप, अविनाशी प्रभ आपे आप। आपन किया कछु ना होए, जे सौ प्राणी लोचै कोए।
ਤਿਸ ਬਿਨ ਨਾਹੀ ਤੇਰਾ ਕਿਛੁ ਕਾਮ, ਗਤ ਨਾਨਕ ਜਪ ਏਕ ਹਰਿ।

दूर कथना कथी नया वैतोट काथ कथ कथी कोटी कोट कोट देदा दे लै दे थक पाहे जुगा जुगंतर काही काहे हुक्मे हुक्म चलाए राहु नानक विकसै वे परवाहु साचा साहिब साच नाए पाकिया पौ अपार आख मंगह देह देह दात करे दातार फेर के अगै रखी जित दिसै दरबार मुहाओ के बोलन बोलिय जित सुन धरे प्यार अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार करमी आवै कपड़ा नदरी मोख द्वार नानक इवै जानिए सब आपे सचियार थापिया न जाए कीता न होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेव्या तिन पाया मान नानक गाविय गुणी निदान गाविय सुनिय मन रखिय पाओ दुख पर हर सुख कर ले जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रिहा समाई गुर ईसर गुर गुर कबरमा गुर पार्वती माई जे हो जाना आखा नाही कहना कथन न जाई गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई तीर्थ नावा जे तिस पावा विण पाने के नाए करी जेती सिर ठुपाई वेखा विण कर्मा के मिले लई मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई जे जुग चारे यार जा होरद सूनी होए नवा खंडा विच जानिए नाल चले सब कोए चंगा नाउ रखाए कै जस कीरत जगले जे तिस नदर नाया वई तवात न पुछे के कीटा अंदर कीट कार दोषी दोष धरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे तेहा कोई न सुजई जे तिस गुण कोई करे सुने सिद्ध पीर सुरनाथ सुने धरत धवल आकाश सुने दीप लो पाताल सुने पोहे न सकै काल नानक भगता सदा विगास सुने दुख पाप का नाश सुने ईश्वर बर्मा इंद सुने मुख साला हनुमंद सुने जोग जुग तन भेद सुने शास्त्र सिमृत वेद नानक भगता सदा विगास सुने दुख पाप का नाश सुने सत संतोख ज्ञान सुने अठसठ का स्नान सुने पढ़ पढ़ पावह मान सुने लागे सहज ध्यान नानक भगता सदा विगास सुने दुख पाप का नाश सुने सरा गुणा के गा सुने सेख पीर पातशाह सुने अंधे पावह राहु सुने हाथ वै सगाहु नानक भगता सदा विगास सुने दुख पाप का नाश मन्ने की गत कही न जाए जे को कह पिछे पछताए कागद कलम न लिखन हार मन्ने का वह करन विचार ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्ने सुरत होवे मन बुद्ध मन्ने सगल भवन की शुद्ध मन्ने मुँह झूठा न खाए मन्ने जम के साथ न जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्ने मार्ग ठाक न पाए मन्ने पथों प्रगट जाए मन्ने मागना चले पंथ मन्ने धर्म से तीसन बंधु ऐसा नाम निरंजन हुए जे को मन जाने मन कोए मन्ने पावे मुख द्वार मन्ने परवार ऐसा धार मन्ने तरे तारे गुरसिख मन्ने नानक पवे न भिख ऐसा नाम निरंजन हुए जे को मन जाने मन कोए पंच प्रवान पंच प्रधान पंचे पावह दर गहमान पंचे सोह दर राजान पंचा का गुर एक ध्यान
जे को कह करे विचार करते कह करने नहीं सुमार तौल धर्म दया का पूत संतोख था पर क्या जिन सूत जे को बुझे हुए सचियार तबले ऊपर किता पार धरती होर पर होर होर तिस्ते पार तले कवन जोर जी जात रंगा के नाप सबना लिखिया बड़ी कलाम एहो लेखा लिख जाने कोई लेखा लिखिया किता हुए

केते मूरख काही काहे, केते आ दुख भूख सदमार, ए पैदा तेरी दातार, बंद कलासी भाणै होए, हो रात न सकै कोए, जे को खाए के आखण पाए, ओ जाने जीतिया मुँह खाए, आपे जाने आपे दे, आख से भे के जिसनु बख्शे शिवसाला, नानक पातशाही पातशाहो, अमुल गुण अमुल व्यापार, अमुल व्यापारी अमुल भंडार, अमुल आवै अमुल ले जाहे, अमुल भाई अमुला सुमाहे, अमुल धर्म अमुल दीवान, अमुल तुल अमुल परवान, अमुल बख्शीस अमुल निशान, अमुल कर्म अमुल फुरमान, अमुलो मुला क्या न जाए, आख आख रही लिवलाए, आख है वेद पाठ पुराण, आख है पढ़े करह ख्याण, आख है बरमे आख है इंद, आख है गोपी तै गोविंद, आख है ईसर आख है सिद्ध, आख है केते कीते बुद्ध, आख है दानव आख है देव, आख है सुर नर मुन जन सेव, केते आख है आखण पाहे, केते कह कह उठ उठ जाहे, ते कीते होर करे, ताक न सकह के ही के, जीवड़ पावे ते बढ़ोए, नानक जाने साचा सोए, जिको आख है भूल बिगाड़, ता लिखी है सिर गावा रंगा वार, सो दर के हा सो कर के हा, जित वह सर्ब संभाले, वाजे नाद अनेक असंखा, केते वावन हारे, केते राग परिस्यों कही है, केते गावन हारे, गाव है तोहनू पौन पानी बैसंतर, गाव है राजा धर्म दुआरे, गाव है चित गुप्त लिख जान है, लिख लिख धर्म विचारे, गाव है ईश्वर ब्रह्मा देवी, सोहन सदा सुवारे, गाव है इंद इंदा सुन बैठे, देवते आदर नाले, गाव है सिद्ध समाधि अंदर, गावन साध विचारे, गावन जति सती संतोखी, गावह वीर करारे, गावन पंडित पढ़न रखी सर, जुग जुग विद्या नाले, गावह मोहनिया मन मोहन, सुरगा मच पयाले, गावन रत्नो पाए तेरे अठसठ तीर्थ नाले, गावह जोद महाबल सूरा, गावह कहानी चारे, गावह खंड मंडल वर पंडा, कर कर रखे तारे, से तुदनो गाव है जो तुद पावन, रत्ते तेरे भगत रसाले, होर केते गावन, से मैं चेतनावन, नानक क्या विचारे, सोई सोई सदा सच साहिब, साचा साची नाई, है पी होसी जाए न जासी, रचना जिन रचाई, रंगी रंगी पाती, कार कर जिनसी माया जिन उपाई, कर कर वेखै कीता अपना, जिव तिस दी वडियाई, जो तिस भावै सोई करसी, हुक्म न करना जाई, सो पातशाहु साहा पातशाहिब, नानक रहन रजाई, पुंदा संतोख शरम पद झोली, ध्यान की करह बेभूत, खिंथा काल कुवारी काया, जुगत डंडा प्रतीत, आई पंथी सगल जमाती, मन जीतै जग जीत, आदेश तिसै आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश, भुगत ज्ञान दया भंडारन, घट घट वाजह नाद, आप नाथ नाथी सब जाकी, रिद्ध सिद्ध अवरा साध, संजोग विजोग द्विकार चला, वह लेके आ वह भाग, आदेश तिसै आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश, एका माई जुगत वे आई, तिन चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी, एक लाए दीवान, जिव तिस भावै तिवै चलावै, जिव होवै फुरमान, उह वेखै उन्ना नदर न आवै, बहुता इहो विडान, आदेश तिसै आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेस, आसन लोए लोए भंडार, जो किछ पाया सुवेका वार, कर कर वेखै सिर जनहार, नानक सच्चे की साची कार, आदेश तिसै आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेस, एक दूजी बहु लख हो, हे लख हो वह लख बीस, लख लख गेड़ा

नानक नदरी पाईए कूड़ी कूड़ै ठीस आखण जोर चुपै नह जोर जोर न मंगण देन न जोर जोर न जीवन मरण नह जोर जोर न राज माल मन सोर जोर न सुरती ज्ञान विचार जोर न जुक्ति छुट्टै संसार जिस हथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच न कोए राती रुती थिती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मशाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी हुए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथै सोहन पंच परवान नदरी कर्म पवै निसान कच पकाई उत्थै पाए नानक गया जापै जाए धर्म कंड का एहो धर्म ज्ञान कंड का आको कर्म केते पवन पानी वै संतर केते काण महेश केते बरमे घाट घड़ी है रूप रंग के वेश केतिया कर्म भूमि मेर केते केते तू

जीव जी हुक्म तिवै तिवकार विकै विकसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार जत पहारा धीर सुनियार अहरन मत वेद हथियार पौ खलागन तपताओ भांडा पाओ अमृत तटाल घड़ियै शब्द सची टकसाल जिनको नदर करम तिनकार नानक नदरी नदर निहाल सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दुए दाई दाया खिले सगल जगत चंगे आई।

काले नमस्तस् दयाले नमस्तंग अवर्णे नमस्तंग अमरणे नमस्तंग जरारंग नमस्तंग कृतारंग नमो सर्वतन्दे नमो सत्वंदे नमस्तंग निरसाके नमस्तंग निर्वाके नमस्तंग रहीमे नमस्तंग करीमे नमस्तंग अनंते नमस्तंग महंते नमस्तस्त रागे नमस्तंग सुहागे नमो सर्वशोकं नमो सर्वपोकं नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्वद्याले नमो सर्वपाले चाचरी चंत्वा प्रसाद अरूप है अनूप है अजू है अपू है अलेख है अपेक है अनाम है अकाम है अदे है अपेय है अजीत है अपीत है त्रिमान है निदान है त्रिवर्ग है असर्ग है अनिल है अनाद है अजय है अजाद है अजन्म है अवर्ण है अपूत है अपर्ण है अगंज है अपंज है अचूज है अचंज है अमीक है रफीक है अतंध है अबंध है निर्बूज है असूज है अकाल है अजाल है अला है अजा है अनंत है महंत है अलीक है नरसीक है निर्लंब है असंभ है अगम है अजम है अपूत है अछूत है अलोक है अशोक है अकर्म है अपर्म है अजीत है अपीत है अबा है अगा है अमान है निदान है अनेक है फिर एक है भुजंग प्रचंद नमो सर्वमान्य समस्ति निदाने नमो देव देवे अपेखी अपेवे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे अनंगी अनाथे नरसंगी परमाते नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत्य नृत्य नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे परपंगी परमाते समस्ति विभूते कलंकंग विनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजे स्वरंग परम रूपे नमो जोग जोगे स्वरंग परम सिद्धे नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे नमो शस्त्रपाणे नमो वस्त्रमाणे नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता अपेखी अपरमी अपुगी अपुगते नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रे देवे सुधर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साह साहं नमो फूप फूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तंग स्नान नमो मंत्र मंत्र नमो जंत्र जंत्र नमो इष्टिष्टे नमो तंत्र तंत्र सदा सचिदानंद सर्वं प्रणासी अनूपे अरूपे समस्तुल निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा वृद्ध कर्ता अदो उर्द अर्ध अगह ओग अर्ता परम परम परमेश्वरं प्रोच पालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं अचेदी अपेदी अनामं अकामं समस्तोपराजी समस्तस्ततामं तेरा जोरचा चरी चंद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपेय हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेश हैं पुजंग प्रयाचंद अगाते अबाते अनंदी स्वरूपे नमो सर्वमाने समस्ति निदाने नमस्तुंग निर्णाते नमस्तुंग परमाते नमस्तुंग अगंजे नमस्तुंग अपंजे नमस्तुंग अकाले नमस्तुंग अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो सर्व रोगे नमो सर्व नमो रोख रोके नमो शोक शोके नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो परम तानंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व जंत्रंग नमो सर्व दृश्यंग नमो सर्व कृष्णंग नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तंग प्रसिजे कृपालंग स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सदा सर्वदा हृदय सिद्धं निवासी चर पट चंत्वा प्रसाद अमृत कर्मी अमृत धर्मी अकल योगी अचल भोगी अचल राजी अटल साजी अकल धर्मंग अलग कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पानी सर्वंग मानी सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग भुगता सर्वंग जुगता सर्वंग देवंग सर्वंग पेवंग सर्वंग काले सर्वंग पाले रुवाल चंत्वा प्रसाद आद रूप अनाद मूर्त जौन पुर कपार सर्वान त्रिमान देव पेवाद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपन काल जत्र तत्र विराज ही अवतूत रूप प्रसाद
नाम ठाम न जात जाक रूप रंग न रेक आद पुरख उदार मूर्त जौ नाथ अशेक देश और न पेश जाकर रूप रेख न राग जितर तत्र दिशा विशा हो फैलु अनुराग नाम काम हीन पेख ताम हूं मैं जाहे सर्व मान सर्वत्र मान सुदय मान तथा एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल खेल खेल अनंत को फिर एक देव भेव न जाने जी वेद और कतेब रूप रंग न जात पासु जानी के जेब तात मात न जात जाकर जन्म मरण विहीन चक्र वक्र फिरे चतर चक माने पुरती लोक चौदह के विखय जग जापी जे जापा देवनाद मूर्त थाप्यो सपै जे था परम रूप नीत मूर्त पूर्ण पुरख अपार सर्विश्वरच्यो स्वयं भव गण भंजन हार कालहीन कला संयुक्त काल पुरख देश धर्म धाम सु परम रहत भूत लख अभेश अंग राग न रंग जाकै जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुख दाय काम आप रूप अमीक अनुस्तेक पुरख अवतूत गर्भ गंजन सर भंजन आदि रूप असूत अंगहीन भंग नात्मेक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्व गंता सर्व हंता सर्व तेन फेक सर्व शास्त्र न जाने जे रूप रंग रेख परम वेद प्राण जाकै नित भाकत नित कोट सिमृत प्राण शास्त्र नया वही वचित मद पार चंत्व प्रसाद गुणगन उदार महिमा अपार आसन अपांग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निश्चिन अनाश आजान धा आजान बाहु सान साहु राजान राज पानन पान दीवान देव उपमा महान इंद्रन इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनभूत अंग अबा भंग गत मित अपार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निर्भय निकाम अतदुत प्रचंड मित गत अखंड अलिश्य कर्म अदृश्य धर्म सर्वा प्रणाड्य अंडंड बाड्य चाचरी चंत्व प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरिंग करिंग निर्णामे अकामे पुजंग प्रिया चंद चतुर चक्र कर्ता चतुर चक्र हर्ता चतुर चक्र दानी चतुर चक्र जानी चतुर चक्र वर्ती चतुर चक्र परती चतुर चक्र पाले चतुर चक्र काले चतुर चक्र पासे चतुर चक्र वासे चतुर चक्र मान्य चतुर चक्र दान्य चाचरी चंद न सत्रह न मित्र न परमंग न पितर न कर्मंग न काय अजन्मंग अजाय न चित्र न मित्र परे है पवित्र प्रतिशय अधिशय अदृश्य कृषय भगवती चंत्व प्रसाद कथते किया छिज देशय किया भिज पिशय किया गंज कर्म किया पांच परमय किया भिज लोकै किया दित सोकै के अवतूत वर्ण के विभूत करने के राजिंग प्रभा के धर्मंग तुझा है के आसुक वर्ण के सर्व अपर्ण के जगतंग कृति है के चत्रंग छत्रि है के बर्मंग स्वरूप है के अनुभव अनुप है के आद अधिव है के आप अपिव कि चित्रंग बहीन के कै अधीन के रोजी रिजा कह रही मैं रिहा के पाक बेअब है के गै भुल गैब है कि अफुल गुना है कि साहन साह है कि कारण कुनिंद है कि रुचि ध्यान दे कि राज करीम है कि कर्मं करीम है कि सर्वंग कली है कि सर्वंग दली है कि सर्वत्र मान्य है कि सर्वत्र दान्य है कि सर्वत्र गौण है कि सर्वत्र भौण है कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र राज्य है कि सर्वत्र साज्य है कि सर्वत्र दीन है कि सर्वत्र लीन है कि सर्वत्र जाहु कि सर्वत्र पाहु कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र पीश है कि सर्वत्र काल है कि सर्वत्र पाल है कि सर्वत्र हंता कि सर्वत्र गंता कि सर्वत्र पेखी कि सर्वत्र पेखी कि सर्वत्र काज है कि सर्वत्र राज्य है कि सर्वत्र सुख है कि सर्वत्र भूख है कि सर्वत्र त्राण है कि सर्वत्र प्राण है कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र पीश है कि सर्वत्र मान्य सदैव प्रधान है कि सर्वत्र जाप्य कि सर्वत्र ताप्य कि सर्वत्र पान है कि सर्वत्र मान्य कि सर्वत्र इंद्र है कि सर्वत्र चंद्र है कि सर्वं काली मैं कि परमं फही मैं कि आकल अलाम मैं कि साहिब कलाम है कि हुसन अल वजू है तमामुल रुजू है हमेशा सलाम है सलीखत मुदाम है गनीमुल शिकस्त है गरीबुल फरस्ता है बिलंदुल मकान है जमीनुल जमान है तमीजुल तमाम है रुजुअल निदान है हरीफुल अजीम मै रजाय की यकीन है अनेकुल तरंग हैं अभेद हैं अभंग हैं अजीजुल निवाज हैं गनी मुल्क राज हैं निरुक्त स्वरूप हैं त्रिमुक्त विभूत हैं प्रभुक्त प्रभा हैं स्वयुक्त सुधा हैं सदैव स्वरूप हैं अभेदी अनूप हैं समस्तोपराज हैं सुधा सर्वसाज हैं
समस्तुल सलामे सदैव लकावै निर्वात स्वरूपे अगाध अनुपे ओंगाद रूपे अनाथ स्वरूपे ओंगाद रूपे अनाद स्वरूपे अनंगी अना मित्र भंगी त्रिकामी त्रिवर्गं त्रिपादी अगंजी अगाधे सुभंग सर्वभागे सुसर्वानुरागे त्रिभुगत स्वरूप है छिज है अछूत है तिलकं प्रणास है प्रतिफुल प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैव सदा है विभुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनुप है निरुक्त सदा है विभुक्त प्रभा है अनुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनुप है चाचरी चांदा भंग है अनंग है अभेक है अलेख है अपरम है कर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अवय है अभूत है अतूत है अनास है उदास है अतंध है अबंध है अपगत है विरक्त है अनास है प्रकाश है निचिंत है सुनित है अलिख है अधिक है अलीख है अपेक है अटा है अगा है असंभ है अगंभ है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजाद है चरपड़ चंद्व प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हर्ता सर्वंग कर्ता सर्वंग प्राण सर्वंग त्राण सर्वंग कर्मंग सर्वंग धर्मंग सर्वंग युक्ता सर्वंग मुक्ता रसावल चंद्व प्रसाद नमो नर्क नासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाते अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामी त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात निरसाकं सरी कह अमितो अमी कह सदैवं प्रभा है अजय है अजा है भगवती चंद्व प्रसाद कि जाहर जहूर है कि हाजर हजूर है हमेश्वर सलाम है समस्तुल कलाम है कि साहिब दिमाग है कि हुसनल चराग है कि कामल करीम है कि राजक रहीम है कि रोजी देहंद है कि राजक रहिंद है करीमुल कमाल है कि हुसनल जमाल है कनिमुल खिराज है गरीबुल निवाज है हरिफुल सिकन है हिरासुल फिकन है कलंक प्रणास है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजायक रहीम है समस्तुल जुबा है कि साहिब किरा है कि नरकंग प्रणास है बहस्तुल निवास है कि सर्वल गवन है हमेशल रवन है तुमा मुल तमीज है समस्तुल अजीज है परम परमीश है समस्तुल अधीश है अधिशल अलिख है हमेशल अपेख है जमीनु जमा है अमीकुल इमा है करीमुल कमाल है कि जरूरत जमाल है कि चलंग प्रकाश है कि मितो सुभाष है कि अजब स्वरूप है कि मितो विभूत है कि मितो प्रसा है कि आत्म प्रभा है कि अचलंग अनंग है कि मितो अपांग है मद पार चंतु प्रसाद मुनमन प्रणाम गुनगन मुदाम अरबर अगंज हरनर पर पंज अनगन प्रणाम मुनमन सलाम हरनर अखंड बरनर अमंड अनपवनास मुनमन प्रकाश गुनगन प्रणाम जल थल मुदाम अंश जंग असन अपांग उपमा पार गत मितोदार जल थल अमंड दिस्विश अपंड जल थल महंत दिस्विश बेअंत अनपवनास त्रेता तुरास आजान बाहु एक कैसे दाहु ओंकार आद कथनी अनाद खलखंड ख्याल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अंश जगात आज जना बात अंश अंज गात अनरंज बात अन टुट भंडार अंडट अपार आडीठ धर्म अतटीठ कर्म अनब्रन अनंत दाता महंत हर बोल मना चंतव प्रसाद करुणालय है अरकालय है कलखंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्वभारण है त्रित के तरण है जग के कर्ण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वंग पर है सर्वंग कर है सर्वपाश्य है सर्वनाश्य है करुणा कर है विश्वंपर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंड से कलखंड से परते पर है करुणा कर है जपा जप है थपा थप है अकृता कृत है अमृता अमृत है अमृता अमृत है करुणा कृत है कृता कृत है धरणी कृत है मितेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत है अमृता अमृत है अजबा कृत है अमृता अमृत है निर्णायक है कलकायक है विश्वंपर है करुणालय है निरपनायक है सर्पायक है भव भंजन है अरगंजन है रिपतापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस की जस है भुजंग प्रया छंद नमो सूरज सूर्जे नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो रासंग तामसंग शांत रूपे नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने
नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विपूते कलंकार रूपे अलंकार लंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे कचरी चंद अजय अलय अपय अभय अपू अजू अनास अकाश अगंज अपंज अलक अपक अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम काम अगाह अटाह अनाथ प्रमथि अजूनी अमूनी नरागि नरंगि नरूपि नरेखि अकर्मंग परमंग गंजि अलेखि भुजंग प्रया चंद नमस्तुल प्रणामी समस्तुल प्रणासी अगंजुल अनामी समस्तुल निवासी निरकामंग विभूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुधर्मंग विभूते सदा सचिदानंद सत्रंग प्रणासी करिमुल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजाय विभूते गजाय विगनिमे हरियं करियं करिमुल रहीमे चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वयं पव सुभंग सर्वदा सर्व जुगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदायांग संगे अपंगं विपुते।

करो संतापि उत्तरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन भये सर से पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे पिणवंत नानक गुर चरण लागे

बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाकुर।

गुर कृपा ते हर मन वसै, होरत बिद लया न जाई। हर धन संची है भाई, जे हलत पलत हर हुए सखाई। रहाओ सत संगति संग हर

सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदर सच्चे पातशाह नानक सच त्याय सच जो मर जमे सो कच निकच महला पहला।

0: सेवक सेवा कर्म चढ़ाओ निरंज न मंचाओ सिखी सिख्या गुरु विचार नदरी कर्म लंघाए पार ओलू चरका चक्की चक थल वारू ले बहुत अनंत लाटू मादानी आनगा पंखी पौंदिया लै नसा सूए चार पवाइये जंत नानक पौंदिया गणत न अंत
1: बंदन बंद पवाए सोए पै कृत नचे सब कोए नच नच हसे चलने से रोई उड़ ना जाए सद न होए नचन कुदन मन का चाओ नानक जिन मन पहो।

0: मूर्ख अंधे पत गवाए विणावे किस थाए न पाई रह बेबाणी मणि मसाणी अंध न जाने फिर पछताणी
1: बेटे सो सुख पाए घर का ना मन वसाए नानक नजर करे सो पाए आस अंधे से तेने केवल हाउ मैं शब्द जुलाए पौड़ी पंक्ति रे मन पावणे।

सच्चा वेखे सोए सब निशाला मारियां करता करे सोए अगै जात न जो रह अगै जियो न में जिनकी लेखे पत पवे चंगे से ही के पौड़ी तुर करम जना कुदुत पाया।

पुस्तक संध्या बादं सिलपू जिस बगल समाधं झूठ भूखण सारं त्रैपाल तिहाल विचारं कर माला तिलक ललाटंग दो धोती बस्त्र कपाटंग जे जानस बनमंग करमंग सब हो कट निश्चो करमंग कौ नानक ने चो त्यावै

चित। जित मुख नाम न उचरै बिन नावै रस खाहे। नानक वै जानिए तित मुख तुका पाहे महला पहला।

0: जित जम में है राजान।
1: पंडो ही पंड उपजे पंडे बाज न कोए, नानक पंडे बाय राय कुछ सच्चा सोए।

से रंग डोबे चुप पी कर जाए प्रवाला किसे घेरी बाज सचिन ध्रवा ट्यूपर खर्च।

चाकरी जित पौ खसम न जाए नानक सेवक कांडिए जैसे ती कसम समय पौड़ी नन।

सुख कने कोई न जाने तुमरायांत ऊचे ते ऊचा भगवान सगल समगरी तुमरा सुतर तारी तुम ते हो वे सो आगे आखा।

अब उर्जियो अल कमले हे बासन माहे मगन एक खिन पी नाही टरे खिन नाही टरिय प्रीत हरिय सीगार हब रस अर्पिय जह दुख सुनिय जम पंथ भणिय तह साध संग न डरपिय कर कीरत गोविंद गुणिय सगल पराचित दुख हरे कहो नानक छंत गोविंद हर के मन हर स्यो नेह करे हो ऐसी मन प्रीत हरे जैसी मछली नीर एक खिन पी ना धीरे मन ऐसा नेह करे हो जैसी चात्रिक प्यास खिन खिन बूंद चवै बरस सुहावे मेहो हर प्रीत करी जै इह मन दी जै अत लाइय चित मुरारी मान न की जै शरण परी जै दर्शन कौ बलिहारी गुर सुप्रसन्न मिल नहा विछुन्ने धन दे दी साच स्नेहा कहु नानक छंत अनंत ठाकुर के हर स्यों की जय नेहा मन ऐसा निहु करे हो चकवी सूर स्नेहु चितवै आस कणी कद दिन यर देखी कोकिल अंब परीत चवै सुहाविया मन हर रंग

बन बन फिरती खोजती हारी बहु अवगाही नानक भेटे साध जब हर पाया मन माही चंत जाको खोज है असंख मुनि अनेक तपे ब्रह्मे कोट अराध है ज्ञानी जाप जपे जप ताप संयम क्रिया पूजा अनिक शोधन बंदना कर गवन बसुदा तीर्थ है मज्जन मिलन कौ निरंजना मानुख बन तिन

उदाहरण संत संग विधे आद अंत बेअंत खोजह सुनी उदाहरण संत संग विधे नानक पयम पै चरण जंपै ओट गही गोपाल दयाल कृपा निदे भगत वचल हर बिरद आप बनाया जह जह संत अराध है तह तह प्रगटाया प्रभ आप लिए समाय सहज सुभाय भगत कारज सारिया आनंद हर जस महामंगल सर्व दुख विसारिया चमत्कार प्रगास तह दिस एक तह दृष्टाया नानक पयम पै चरण जंपै भगत वचल हर बिरद आप बनाया आसा महला पंजवा थिर

संकट महाजोन लपट रहो तेह संग मीठे भोग सोन प्रमत पार अगणंत आयु बहु परदेसै तहायु अब ओट तारी प्रभ मुरारी सर्व सुख हर नायु।

हर हर जस सुनहु श्रवण, सुन श्रवण बानी पुरख ज्ञानी, मन निधाना पावहे। हर रंग राते प्रभ विधाते, राम के गुण गावहे। बसुद

सगल लही मात पिता सुतमीत सुरजन इष्ट बंधप जानिया गह कंठ लाया गुर मिलाया जस

प्रभ ते आई संजोग साहा शुभ गणिया बिनवंत नानक मिले श्री धर सगल आनंद रस बनिया मिल सखिया पुछ।

गुण गूढ गुप्त अपार करते, निगम अंत न पावहे। भगत पाए त्याए स्वामी, सदा हर गुण गावहे। सगल

माणी सुख सोहे लड़े हर गावन लागे साजन सरसे अड़े दुख दुश्मन भागे सुख सह

अम्यो दृष्ट सीचंती, बिनवंत नानक मेरी इच्छ पुन्नी, मिले जिस खोजंती। नस वंजहु किल विखहु, करता घर आया, दूतह दहन भया, गोविंद प्रगटाया।

बिनवंत नानक सिमर स्वामी सगल आस पुजायन निद सिद चरण गहे ताके हा काड़ा सब किच वस जिसे सो प्रभु असाड़ा।

तीक्षण मद बपरीत हे अवध अकार सजात गहबर बन कूर गहबर बन कूर हे ग्रह मूसत मन चोर हे दिन करो अन दिन खात।

खिन रहन त्रिग तन तिस बिना, पलका न लागे प्रे प्रेम पागे, चितवंत अन दिन प्रभ मना।

पीत कमल बंधावत आप। चात्रिक चित प्यास, चात्रिक चित प्यास हे, कान बूंद बचित्र मन।

0: जी का खालसा
1: वाहिगुरु जी की फतेह
2: वाहिगुरु जी फतेह
0: वाहिगुरु
2: जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह
0: वाहिगुरु
1: वाहिगुरु जी का खालसा।

0: जी, आंटी जी,
1: आंटी जी,
0: टाइम की होया, टाइम की ना हो
2: यार। ओह
1: I'm asking like what like the time is for like the whole show, but

0: Goodbye.
1: Oh my God, this is so loud. कौन गुरु रूप प्यारी साध संगत जी पति दी सांझ पाओ जी
2: वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
1: अज असि श्री गुरु अर्जन देव जी दा उचारिया शब्द प्रभ जी मोहे कवन अनाथ बेचारा राग सारंग विच गायन करन जा रहे हां। ए पावन शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंग 1220 उपर सुशोभित है। सारंग राग दोपहर वेले गाया जान वाला एक बहुत ही मनमोहक राग अते ए मन विच शांति ते प्रभु मिलाप दी तड़प पैदा करता है।
3: ऐस शब्द दा पाव है रब दे मेहर तो बिना मनुख एक विचारा अते ने माना अनाथ है। ऐ केवल परमात्मा दी ही महानता अते वडियाई है कि उसने सानू एक मनुखी जीवन दिता। उसने सानू जीन लई सारे पदार्थ बख्शे हन। ओ वाहे गुरु ही सब दे असली पालनहार हन अते ओ ही जीव दी रक्षा करदे हन। प्रभु दे गुण इन्ने बेअंत अते महान हन कि असी बच्चे उन्हां नू अपने शब्दां विच बयान भी नहीं कर सकते।
4: द मेन मैसेज ऑफ दिस शब्द इज that we are completely helpless and like lost orphans. It is only because of God's amazing power and kindness that He created us into human beings. He provides us with everything we need to live in this world. His virtues and qualities are so endless and magnificent that we cannot fully describe them in words.
5: ਤਬਲੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਨ ਮਧ ਲੈ ਤੀਨ ਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਾਚਾਰਨ ਵਿਲੰਬਿਤ ਏਕ ਤਾਲ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਾਇਨ ਦ੍ਰੁਤ ਏਕ ਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਨ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਂਗੇ ਜੀ।

कोई नागमनी लभदा फिरदा है, कोई कोई सुख लभदा फिरदा। पर गुरु अर्जुन देव जी कह रहे ने जिन्ना कोल सुखां दी मनी सुखमनी है ना, उस कर दे रोग कलेश दुख दूर हो जाते। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माहे मिटा। इस शरीर दे भी कलेश मुक जाते, घर परिवार दे भी कलेश मुक जाते, पर इस सुखमनी सुख अमृत प्रभु नाम एदा वासा ही भगतां दे हिरदे विच हुंदा। भगत जना के मन विसरा, जां इंज कह लईए जिथे सुखमनी वस जाए ओ भगत बन जाए। ऐसी बख्शिश आपकी निर्माणी है, फुल चुक दी खिमा गुरु बख्शिश करे रहमत करे, पाडे साडे ते सबना ते चढ़दी कला सब दे कारज रास। भाई लखविंदर सिंह जी ओ आप जी दे सन्मुख होणगे, गुरमत विचारा द्वारा तुहानू निहाल करनगे, साडियां भुल्लां बख्श लैणियां। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु।

जना के मन विसरा। कोई सुखानी मनी लभदा फिरदा है, कोई नागमनी लभदा फिरदा है, कोई कोई सुख लभदा फिरदा है। पर गुरु अर्जुन देव जी कह रहे ने जिन्हां कोल सुखां दी मनी सुखमनी है ना, उस कर दे रोग कलेश दुख दूर हो जाते। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माहे मिटा। इस शरीर दे भी कलेश मुक जाते, घर परिवार दे भी कलेश मुक जाते, पर इस सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम एदा वासा ही भगतां दे हिरदे विच हुंदा है। भगत जना के मन विसरा, जां इंज कह लईए जिथे सुखमनी वस जाए ओ भगत बन जाए। ऐसी बख्शिश आप जी ने माणी है। फुल चुक दी खिमा गुरु बख्शिश करे, रहमत करे पाडे साडे ते सबना ते, चढ़दी कला सब दे कारज रास। भाई लखविंदर सिंह जी वो आप जी दे सन्मुख होणगे, गुरमत विचारा द्वारा तुहानू निहाल करनगे, साडियां भुल्लां बख्श लैणियां। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु।